0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुच्चेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुच्चेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुच्चेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala over victory in assembly elections. Addressing the party workers at the BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said the day heralds a new dawn for the nation.
1: Jai parajay loktantra aur chunavi rajniti ka ek swabhavik hissa hota hai lekin panch pradeshon ki janta ne pure vishwa ko dikhaya hai ki ye hamara bharat mother of democracy kyon hai loktantra democracy hamare liye sirf ek tantra nahi hai ye hamari ragon mein daudta hua sanskar hai aur aaj sirf bharat ka loktantra hi nahi jeeta hai aaj bharat ka samvidhan bhi jeeta hai.
2: The Prime Minister said that the BJP NDA governments are in power in more than 20 states of the country. History has been created on two fronts in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal for the first time, while debutante Tamilaga Vethri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, in other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected their sitting governments, whereas Kerala has voted for a new dispensation. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than a two-thirds majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule, while the TMC trailed far behind, managing to win 80 leading in one seat in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Congress and Aam Janata Unnayan Party, AJUP, secured two seats each. CPIM clinched one seat. Chief Minister Mamata Banerjee lost in the prestigious Bhavanipur seat to BJP Suvendu Adhikari by more than 15,000 votes. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vithri Karagam, TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. TVK chief C. Joseph Vijay won both Perambur and Tiruchi East seats. In the 234-member assembly, the ruling DMK secured 59 seats, while its main rival, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, won 47 seats. Chief Minister M.K. Stalin lost to TVK candidate V.S. Babu at Kolhapur in Chennai. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. The BJP has bagged 82 seats, while its allies, Assam Gana Parishad, has won 9 seats and Bodoland People's Front has secured 10 seats. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Among the NDA constituents, the All India NR Congress has won 12 seats, the Bharatiya Janata Party 4 seats, while other allies, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and Lachiya Jananayaga Kachi, winning 1 seat each. In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium in Mumbai last night. Chasing the target of 229 set by Lucknow Super Giants, Mumbai overhauled the score in 18-point overs. And that is the end of this news bulletin.

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और आगाज करना चाहूंगी इस कविता के साथ। कहती है नई सुबह, नई उम्मीद लाती है, हर रोज यही बात जीना सिखाती है। रात गई बात गई, हर सुबह की शुरुआत है, सबसे बढ़कर काम कर यही आज की मांग है। जिस तरह सूर्य की पहली किरण उम्मीद की आशा जगाती है, अपने जीवन से अंधेरा हटाकर ये नया संदेश सुनाती है।

ऐसा है दोस्तों कि आपकी सुबह को बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए लेकर आते हैं हम कार्यक्रम 100.1 एफएम गोल्ड पर सुहानी सुबह। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोता जो 7 बजे ठीक नहीं मतलब ट्यून कर पाए हों, 2-3 मिनट लेट हो गया हो, तो उन सभी का फिर से मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि सुबह उठकर ना अगर आप मुस्कुराते हो तो समझो कि मतलब दिन का पहला सबसे अच्छा काम आपने किया। और मुस्कुराते हुए जब आप उठेंगे तो पूरा दिन आपके लिए जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और इसी बात पे पहला गाना आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, और नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए फिल्म गीत गाता चल से जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

कोलकाता के लिए लोकल फोरकास्ट। लोकल फोरकास्ट अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है। आज 5/5/2026 आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी तूफान आने की बहुत संभावना है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 34.0 डिग्री जो सामान्य से -1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 22 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से -4.1 डिग्री कम है। मैक्सिमम आर्द्रता की बात करूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तो 94%, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 59%। 4/5/2026 को 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5/5/2026 को 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच बारिश जो हुई है वो है 0.02 मिलीमीटर। वेस्ट बंगाल के मछुआरों के लिए मौसम की चेतावनी, 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। कभी कभी आज के लिए मतलब 5/5/2026 को वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा के कोस्ट पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 5/5/2026 को पश्चिम बंगाल और उत्तर उड़ीसा के तट पर समुद्र में ना जाएं। और अब अगला गीत आप सभी के लिए, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, गीतकार गुलजार, संगीतकार खयाम, आवाज अनवर और सुलक्षणा पंडित की।

आज है 5 मई और इतिहास के पन्नों में 5 मई किन वजहों से खास है, इस पर भी कुछ बातें आपसे साझा जरूर करना चाहूंगी। जैसे कि 5 मई 1479 सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ था। 5 मई 1818 जर्मन अर्थशास्त्री और महान विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वहीं 1821 में 5 मई को फ्रांसीसी शासक और सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का निधन हुआ था। 5 मई 1903 गांधीवादी नेता, अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी अविनाश लिंगम चट्टियार का जन्म हुआ था। 5 मई 1916 भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जेल सिंह का जन्म हुआ था। 5 मई 1929 प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी अब्दुल हमीद केसर का जन्म हुआ था। 5 मई 1935 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हिंदी गुजराती साहित्यकार आबिद सूरती का जन्म हुआ था। 5 मई 1937 को परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ था। 5 मई 1953 भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी का निधन हुआ। 5 मई 1954 भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्म हुआ। 5 मई 1961 अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कमांडर एलन शेपर्ड अपने अंतरिक्ष यान से अटलांटिक महासागर में उतरे। 5 मई 1970 प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज समरेश जंग का जन्म हुआ था। 5 मई 1989 दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री राय लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी राय का जन्म हुआ। 5 मई 2005 ब्रिटेन ने टोनी ब्लेयर तीसरे बार प्रधानमंत्री बने। 5 मई 2006 भारतीय संगीत के जादूगर माने जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने दुनिया को अलविदा कहा था। 5 मई 2009 अमेरिका के प्रसिद्ध नारीवादी महिला मर्लिन फ्रांसिसी की न्यूयॉर्क में 99 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। 5 मई 2010 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी की साउंडिंग रॉकेट का उड़ान परीक्षण सफल रहा। इसमें एयर ब्रीदिंग तकनीक वाले स्मैक जेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। 5 मई 2017 इसरो ने सफलतापूर्वक साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया था।

पर। और ऐसा है दोस्तों कि 100.1 FM गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सुहानी सुबह। और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सुलक्षणा आपको कोलकाता के कुछ गलियों में ना ले चले अगले गीत के जरिए। तो चलिए घूमते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत टहलना भी बहुत जरूरी होता है।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:34 और 9 सेकंड और फिलहाल आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग खरा सोना पर यानी कि 100.1 FM गोल्ड

ऐसा है साथियों दोस्तों कि कलकत्ता में ही नहीं बल्कि आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस 2026 5 मई का विषय है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच अभी भी एक अत्यंत आवश्यकता है। विश्व अस्थमा दिवस 2026 जो है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है मई महीने के, और उद्देश्य है कि इस वर्ष की थीम जो है वो सुनिश्चित

किया गया है और उस पे केंद्रित है कि अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति को प्रभावी सूजन रोधी इन्हेलर मिले, विशेष रूप से 2-in-1 इन्हेलर जो लक्षण और कारण दोनों का इलाज करते हैं। महत्व की बात करूं तो ये दिन वैश्विक स्तर पर अस्थमा के प्रति जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। इस वर्ष का अभियान इस बात पर जोर देता है कि सही शिक्षा और इन्हेलर तक पहुंच से अस्थमा के दौरे के जोखिम और अस्पताल में भर्ती होने के दर को कम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब तक कोई किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को नहीं देख पाता, उनके कष्टों को नहीं देख पाता, तब तक वो भली भांति समझ नहीं पाता कि किसी भी बीमारी से कितना कष्ट हो सकता है और कितनी परेशानी होती है। ऐसे में अगर मैं कहूं कि अस्थमा के जो रोगी है ना, उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। हमारे एक रिलेटिव थे जिन्हें अस्थमा था, और मैं आपको बता दूं कि किसी के भी घर में अगर कोई भी है जिसे अस्थमा है, उन्हें डस्ट, ठंड से बहुत परहेज करना है। ये जो धूल है, धूल से खांसी बढ़ जाती है। वैसे ही अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, और अगर उन्हें शुद्ध हवा ना मिले तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। धुएं से परहेज करें, धूल से परहेज करें और ठंड से परहेज करें। और मरीज चाहे जो भी हो, उसके घर वाले उसे खूब सारा प्यार दें, खूब सारा अपनापन दें। चलिए अब अगला गीत आप सभी के लिए। ये जरूर कहूंगी कि मौसम जब भी बदलता है तो इंसान को सतर्क होना चाहिए, और सतर्क होने के लिए जरूरी है कि हम अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में जिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 7 बजे उठे, किसी दिन 9 बजे उठे, मतलब जब जो चाहे वही करें, नहीं। डिसिप्लिन भी जो है वो सफलता की कुंजी है, और इन एवरी रिस्पेक्ट। तो सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और अगर ये भी नहीं करते तो थोड़ी दौड़ लगाइए ना, थोड़ा टहलने के लिए निकल जाइए, और किसी भी जगह जाए ये याद रखिए कि साथ में एक मास्क रखना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब आपको उसकी जरूरत पड़ जाए।

हमेशा जब भी घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अगर किसी से मदद भी ले तो बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। क्यों? एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करना चाहूंगी। एक बिच्छू एक मेंढक से नदी पार कराने के लिए कहता है। मेंढक को बिच्छू के डंक से डर लगता है, लेकिन बिच्छू कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो दोनों डूब जाएंगे और बिच्छू की जान चली जाएगी। मेंढक मान जाता है, लेकिन नदी के बीच में बिच्छू उसे डंक मार देता है जिससे दोनों की जान चली जाती है। बिच्छू पूछता है बाद में कि ऐसा तुमने क्यों किया,

चलते चलते आपकी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत यही कहेगी कि भविष्य उन्हीं का है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। और इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेगी, अभी जाऊंगी तभी तो 11:10 पर आऊंगी लेकर कार्यक्रम, लो आ गई उनकी याद। और इस बीच अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुन सकते हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर, यानी कि 107 FM रेनबो पर 10:02 से लेकर 11 तक रहूंगी लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। और फिलहाल यही कहूंगी कि आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी के सपने साकार हो। इसी बात पे ये अगला गीत फिल्म बरसात की एक रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनिए और आज्ञा दीजिए सुलक्षणा पर्वत को। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्ता

0: रूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआई एम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है।

0: है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य को राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम TVK ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा NDA सरकारें सत्ता में हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nina Arikel. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government

0: in the state. For the first time, debutant Tamilaga Vetri Kazhagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than two-thirds majority in the assembly, ending the TMC 15-year rule. Out of the 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the NDA has regained power, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member House. Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi last evening after poll results, the Prime Minister said that BJP NDA governments are in power in more than 20 states. He said BJP's mantra is citizen is God and party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party.
1: Jai पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, भारत का संविधान भी जीता है।
0: In Bihar, 12 people lost their lives in separate incidents of storm, rain and lightning yesterday. Five deaths were reported from East Champaran district, four from Aurangabad and three from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. He has directed that an ex gratia amount of 4 lakh rupees each be provided to the next of kin of the deceased. Vietnam President Tho Lam is arriving at Gaya in Bihar today on a three-day state visit to India. He is being accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government along with a strong business delegation. He will arrive in New Delhi later in the day. A large fire broke out at the Fujairah Oil Industry Zone yesterday after what authorities described as a drone attack originating from Iran. It is the first such strike to cause significant damage on UAE soil since a ceasefire took hold last month. Civil defense teams were deployed immediately to contain the blaze, with three Indian nationals reported to have sustained moderate injuries and been taken to hospital. Two Indian journalists have won the prestigious Pulitzer Prize for an art reporting project exposing cybercrime in India. Anand R.K. and Suparna Sharma, along with Natalie Obiko Pearson, were announced as the winners in the illustrated reporting and commentary category for the report they produced for Bloomberg. In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets in Mumbai last night. Today, Delhi Capitals and Chennai Super Kings will clash in Delhi at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों के चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल वे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका के समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबूधाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट।
3: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की खबरों के बाद आई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका की सेना ने जलडमरू मध्य में 7 ईरानी नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि जहाजों को नष्ट करने के अभियान में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम कहे जाने वाले अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य फंसे हुए जहाजों की सहायता करना और रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराना है। सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कपूर ने कहा कि 87 देशों के जहाज मौजूदा तनाव में निर्दोष दर्शक बनकर फंसे हुए हैं। इस बीच ईरान का कहना है कि जल डमरू मध्य बंद है और उसने अमेरिका के विध्वंसक जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: अमेरिका ने पिछले महीने रोके गए ईरान के मालवाहक जहाज के 22 चालक दल के सदस्यों में से 15 को छोड़ दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले जहाज तोस्का को 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार के तट पर नौसैनिक नाकाबंदी के तहत रोक दिया था। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने भी छोड़े गए चालक दल के सदस्यों की ईरान पहुंचने की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार

पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा की बंगाल में जीत भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत और 61 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। ये विस्फोट कल शाम लियुयांग स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ। बचाव कार्य के लिए 5 टीमों में से 480 से अधिक बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 3 बचाव रोबोट भी शामिल हैं। विस्फोट स्थल बारूद के 2 गोदामों के पास स्थित होने के कारण बचाव दल ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव प्रयासों के लिए विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा है। 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप के चलते ऑस्ट्रिया से निष्कासित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मैनेल रिसिंगर ने कहा कि पहले ही देश छोड़ चुके ये राजनयिक भवनों की छतों पर लगे कई सारे एंटीना का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रहे थे। रूसी दूतावास ने कहा कि ऑस्ट्रियाई अधिकारियों की यह नवीनतम कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित और रसासर अस्वीकार्य है। ये उन घटनाओं की श्रृंखला में ताज़ा घटना है जिनमें व्यक्तियों पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रिया ने 14 रूसी दूतावास कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। माली के सैन्य प्रमुख जनरल असीमी गोइता ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले इस पद पर रहे जनरल की हत्या कर दी गई थी। देश में जिहादियों और अलगाववादियों विद्रोहियों के हमलों के कारण सुरक्षा संकट बना हुआ है। अलगाववादी अजवाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े JNIM ने पिछले महीने की 25 तारीख को माली के शहरों और कस्बों में हमले किए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाइजर और बुर्की फासो की सशस्त्र सेनाओं के साथ संयुक्त कार्रवाई कर जिहादियों और अलगाववादियों पर हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 और 9 मई को यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि कीव विजय दिवस समारोह में बाधा डालने का प्रयास करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कल आधी रात से युद्ध विराम का पालन करेगा और रूस की कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। हालांकि युद्ध विराम की समाप्ति तिथि अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। मैक्सिको आज फ्रांसीसी साम्राज्य पर अपनी अप्रत्याशित विजय की याद में सिंको डी मायो उत्सव मनाएगा। वर्ष 1862 में जनरल इग्नासियो जराजोआ गोजा के नेतृत्व में प्यूबला के युद्ध में एक छोटी और कमजोर हथियारों से लैस मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की श्रेष्ठ फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों को चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और

0: निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकषगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्य विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन के राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77,103 पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 24,053 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:11 और आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड। ऐसा है दोस्तों कि इस समय आपको इंतजार रहता है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद, और आपकी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, वेलकम करती है इस कार्यक्रम में। और जाहिर सी बात है कि जब आई हूं तो आपको विषय भी बता दूं। ऐसा है कि मतलब आज थोड़ा हटकर है विषय, और हटकर इन द सेंस है कि आप ज़्यादातर बायोग्राफी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना कुछ अलग से भी प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे कि आज है बॉलीवुड में जो डायलॉग्स हैं उन पर केंद्रित है, तो मैं यही कहूंगी कि बॉलीवुड फिल्मों में डायलॉग्स यानी संवाद का महत्व केवल कहानी बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे फिल्म की आत्मा होते हैं। दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने, पात्रों को अमर बनाने और फिल्मों को आइकॉनिक बनाने में दमदार डायलॉग्स की मुख्य भूमिका होती है। और क्या बताऊं, जब मैं ये बात कह रही हूं तो फिर आप इस वक्त कई सारे बॉलीवुड डायलॉग्स आपके दिमाग में जो है ना वो मतलब सभी डायलॉग्स आपको याद आ रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे हाँ इस फिल्म में ये डायलॉग है, उस फिल्म में वो डायलॉग है, और इस फिल्म से इस ये हीरो जो है वो सुपर हिट हो गया और उसकी नाम पहचान बन गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, और इसको चलने दीजिए। जी हाँ, अरे अगर सारा दिन नहीं तो 12 बजे तक तो चलने दीजिए दिन के, क्योंकि मैं ये कार्यक्रम में रहूंगी 12 बजे तक। और ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे डायलॉग्स जो हैं मतलब बॉलीवुड के फैंस को कंठस्थ होते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया की बात करूं तो मोगैम्बो खुश हुआ, भला ये कौन भूल सकता है। वैसे अभी सुनाती हूं मैं एक गीत और उसके बाद मैं बातें करूंगी विस्तार से। फिल्म इश्क से सुनिए उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में इस गीत को, जिसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

0: करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: अगला गीत फिल्म तीसरी मंजिल से शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में, इसे कलमबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।
1: मुड़ मुड़ कर देख रही हैं, कोई खास बात है पीछे?
2: पीछे आप है, खास बात नहीं।
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा?
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन?
1: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चले।
1: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
2: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप?
3: दीवाना

ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के डायलॉग्स हैं जो हमारे जिंदगी को छू लेते हैं। हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग भी बन जाते हैं, क्योंकि उसे हमें दशा दिशा दोनों ही मिलते हैं कभी कभी। अगर मैं आपको कहूं कि फिल्म आनंद का वो डायलॉग भला कौन भूल सकता है, जिसमें इतनी प्रेरणा है कि क्या कहा जाए। जी हां, वही डायलॉग जो आनंद यानी कि राजेश खन्ना आनंद का किरदार निभाए थे, और वो कहते

0: कहते हैं अपने डॉक्टर साहब से, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। और इस डायलॉग में वाकई में मतलब क्या कहूं, अगर आप गौर से इस डायलॉग को समझने की कोशिश करें तो जिंदगी का फलसफा बहुत ही आसान हो जाएगा।
1: मैंने

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:29 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के खरा सोना पर यानी कि 100.1 पर। लो आ गई उनकी याद आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और आज हम कुछ ऐसे डायलॉग्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि हमारे जिंदगी को छू ली है और छू लिए हैं। और ऐसा है कि इसी क्रम में मैं जिक्र करना चाहूंगी उस फिल्म का जो रिलीज हुई थी 2009 में, फिल्म 3 इडियट्स। फिल्म की सबसे प्रतिष्ठित आइकॉनिक और यादगार डायलॉग्स जो है, मैं क्या कहूँ, रैंचो द्वारा यानी कि आमिर खान

0: एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये तो हुआ एक डायलॉग। दूसरा, जो कि बहुत छोटा है, लेकिन जिसने भी ये फिल्म देखी हो, थ्री इडियट्स, उसे कंठस्थ हो गया है, वो क्या है? जाएं और कहें ऑल इज वेल। तो चलिए, इसी फिल्म से मैं आपको एक गाना सुनवाना चाहती हूं, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चलिए आपको राजेश खन्ना का एक प्रसिद्ध डायलॉग सुनाती हूं, और ये डायलॉग हमने लिया है फिल्म दाग से। फिल्म दाग का ये डायलॉग है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में। बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 11:40 और आप सुन रहे कार्यक्रम लोग आ गए उनकी याद विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि आज हम कुछ चंद ऐसे डायलॉग्स का जिक्र कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी को छू गए हैं, और उसी सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहूंगी उस फिल्म का जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1993। फिल्म का नाम बाजीगर, और बाजीगर का एक डायलॉग ऐसा है कि जो आपको प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, और अगर वाकई में ये आपकी जिंदगी को छू गया तो जिंदगी सफलता का परचम जरूर लहराएगी। और ऐसा है कि वो डायलॉग छोटा है लेकिन बहुत ही उसमें क्या कहें वजन है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिल्म में ये डायलॉग जो है शाहरुख खान कहते हैं। और चलिए अब इसी फिल्म से आपको एक गाना भी सुनवाती हूं, ए मेरे हमसफर, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार गौहर कानपुरी और संगीत का जो संगीतकार है वो है अनु मलिक।

जी हाँ, अगला डायलॉग जो मैं आपसे साझा करूंगी उसे हमने लिया है उस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। हाँ हाँ, वही फिल्म जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण लीड रोल निभाए थे। उसमें रणबीर कपूर का एक डायलॉग है, वाकई में बहुत कमाल का है, कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा। मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता।

अभी जो गीत आपने सुना इलाही अरिजीत सिंह की आवाज में, इसे हमने लिया था फिल्म ये जवानी है दीवानी से। और अगर बात करूं, कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमारे जिंदगी को इस कदर मोटिवेट करते हैं कि बस अगर उन्हें हम दिलो दिमाग में बसा ले तो हम जिंदगी में वाकई में बड़े खुश रहेंगे, सफल होंगे। जैसे कि सबसे ज़रूरी है ना दोस्तों कि हम खुद से प्यार करें। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो भला हम दूसरों में क्या प्यार बांटेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो हम बांटेंगे। और इस बात को कहते हुए मुझे याद आ रहा है उस फिल्म के बारे में जिसका नाम था जब वी मेट, रिलीज हुई थी इन द ईयर 2007। उसमें करीना कपूर ने जो किरदार निभाया था, उस किरदार का ये मानना था और उसका डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूं। दोहराती हूं फिर से, मैं अपनी फेवरेट हूं। अगर हम सब अपने फेवरेट हो जाए ना तो वाकई में हम अपने लाइफ को बड़े अच्छे से नरिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ दंगल फिल्म का वो डायलॉग वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है, छोरियों क्या छोरों से कम है। और अगर मैं बात करूं डियर जिंदगी फिल्म की तो उसमें भी बहुत ही एक जानदार शानदार डायलॉग था शाहरुख खान का, जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या समझते हैं इट डजंट मैटर एट ऑल। और अब क्या कहूं, हर किसी को अपने जिंदगी से प्यार है, और जब प्यार की बात हो, जिंदगी की बात हो, तो भला फिर मैं वो डायलॉग कैसे भूल सकती हूँ जो कि उस फिल्म का है जो रिलीज हुई थी 1995 में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब अमरीश पुरी अपनी बेटी काजोल यानी सिमरन से कहते हैं फिल्म में, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसी के साथ सुलक्षणा पर्वत को आज्ञा दीजिए, चलते चलते आप सभी के लिए उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया से ये गीत, हो गया है हमको तुमको तो प्यार सजना। और इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए मुझे आपकी रेडियो दो सुलक्षणा पर्वत को, और चलते चलते यही कहूंगी कि आपका दिन मंगलमय हो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडैक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक

0: जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday, following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. It said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties and identifying new avenues to further strengthen cooperation. He noted that both countries signed several important agreements and discussed the effective implementation of recently concluded MOUs in areas such as digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements and we discussed effective implementations of MOUs which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
2: The government has said there has been no dry out at LPG distributorships across the country and has assured that measures are being taken to ensure uninterrupted availability of petroleum products and LPG amid the evolving situation in West Asia. During the interministerial briefing in New Delhi last afternoon, officials asked citizens to avoid panic buying of petrol, diesel and LPG and to rely on official sources for accurate information. It said that online LPG cylinder bookings across the country have increased to 99% on an industry basis and commercial LPG supply has been restored to around 70%. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has reiterated the government's commitment to building a strong research and innovation ecosystem in the country. Addressing the IIT Madras Tech Summit in New Delhi today, Mr. Pradhan emphasized the need to transform India's research ecosystem to deliver innovation-driven outcomes. He said research should not remain limited to PhD theses and academic publications, but must lead to tangible innovations that benefit society.
4: Today, with the leadership of Prime Minister Modi, government is committed to create a new ecosystem in research sector. Gone are the days where institutions will only be specific to teaching. Now priority has changed. There is a societal consensus institution must. Research should not be limited up to PhD thesis, citation, paper publication. Research must lead to innovation.
2: Vietnam President Tho Lam is arriving at Gaya in Bihar today on a three-day state visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam, along with a strong business delegation. The Vietnamese president will arrive in New Delhi later in the day. History has been created on two fronts in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal for the first time, debutant Tamiragavetri Kargam TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu by securing 108 seats out of 234. Meanwhile, in other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected their sitting governments, whereas Kerala has voted for the Congress-led UDF alliance. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than two-thirds majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. And with that, we end this news bulletin.

0: been appointed as the central co-observer in the state, while Union Minister JP Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the Legislative Party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. In Bihar, 12 people lost their lives in separate incidents of storm, rain and lightning yesterday. 5 deaths were reported from East Champaran district, 4 from Aurangabad and 3 from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast light to moderate rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds over Madhya Pradesh, Vidarbha and Chhattisgarh during the next 2 days. Parts of Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Gangetic West Bengal are expected to experience similar conditions today. In IPL cricket, host Delhi Capitals will face Chennai Super Kings at Arun Jaitley Stadium this evening. The match will begin at 7:30 this evening. Last night, hosts Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium. Chasing the target of 229 runs, Mumbai Indians overhauled the score in 18.4 overs at the loss of 4 wickets. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, resulting in injuries to 3 Indian nationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा

0: है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुस जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुस जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। AIADMK के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। UDF सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक

0: की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
3: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
4: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
5: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमरीका में कोलम्बिया

0: यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु में टीवी के राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित टीवी के विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य देखभाल पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा जापान में स्वास्थ्य देखभाल नीति प्रभार के मंत्री किमी उनोदा ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह बैठक सहयोग को और सुदृढ़ करने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी को मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Yes, listeners, it's time for me, Ranjan Dhatu, to bring the curtains down on our program, Musical Bandbox on FM Gold for today. See you people once again at 6:30 when I shall be there with Cinemagic on FM Rainbow. But right now, stay tuned, keep on listening to 100.1 Akashvani FM Gold.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Shakti Singh. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेते के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मंडादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमशिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और उनके अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: बहुत बहुत स्वागत आप सबका चाय और क्लासिक्स लेकर। चैनिका आज हाजिर है जहाँ पर आप चाय या कॉफी की चुस्कियों के साथ मजा लेते हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आज के कार्यक्रम की एकदम खूबसूरत शुरुआत।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

और आज का जो मौसम है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। ये कल एकदम ठंडी ठंडी बयार शाम को बह रही थी और आज दोपहर से थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास आपको ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मौसम फिर भी अब तक उतना भी जालिम नहीं हुआ है जितना पूरे देश भर में गर्मी ने तहलका भी फिलहाल मचाया हुआ है। इसलिए ये जो शाम है ये सुहानी है और इस सुहानी शाम को आपकी चाय की चुस्कियाँ यकीनन और खूबसूरत बना रही होंगी और बस हम चाहते हैं कि बस हम आपके साथ जुड़े रहें आपके इस खूबसूरत समय के साक्षी बनकर। बहुत सारी बातें हम करते हैं चाय और क्लासिक्स में और शुरुआत जिस तरह हमेशा मेरे कार्यक्रम में मैं करती हूँ, आज भी चलिए उसी सफ़र पर आपको लेकर चलूँ। तो आपको बताऊँ आज के दिन की खासियत, आज है 5 मई और इतिहास के पन्नों में 5 मई के नाम कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। 1479 में सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का आज के दिन जन्म हुआ था। 1821 में यूरोप को विज्ञान और बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन का आज ही के दिन निधन हुआ था। सन 1916 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म हुआ था और साल 2006 में संगीत के जादूगर कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। आज कुछ खास लोग बनाते हैं अपने जन्मदिन के बारे में भी आपको जरूर ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुना जाए आप सबके लिए मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज। सुनते रहें साथ रहें चाय और क्लासिक्स।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

जारी है कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ खास लोग आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, तो चलिए उनके बारे में बात की जाए। सन 1818 में आज के दिन महान विचारक, इतिहासकार और जाने माने जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री से समाजशास्त्री थे, पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी थे, कौन नहीं जानता आपको। और इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल जैसी कालजयी रचनाएं लिखी, जिन्होंने वैश्विक राजनीति और आर्थिक विचारधाराओं को बड़ी गहराई से प्रभावित किया था। इसके अलावा भी एक अलग फील्ड की हस्ती, एक अलग ही क्षेत्र के व्यक्तित्व का भी आज जन्मदिन है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल कार्ल मार्क्स को याद करते हुए हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आगे कार्यक्रम में जैसे कि मैंने कहा, छुटपुट बातें तो होंगी लेकिन रहेगा क्लासिक्स का साथ, ये साथ नहीं छूटेगा, ये एकदम पक्का वाला साथ है। तो आप सबके लिए एक और गाना मैं लेकर आई हूँ, चलिए सुनते हैं एक दफ़ा और किशोर कुमार को। इस दफ़ा लता मंगेशकर उनके साथ रहेंगी और ये युगल गाना है। फिल्म का नाम आपको मैं बताना चाहूँ तो चरित्रहीन फिल्म से ये गीत मैं सुनवा रही हूँ, राहुल देव बर्मन का संगीत, गीतकार आनंद बख्शी। सुनते रहें, साथ रहें FM गो।

भारतीय फिल्म संगीत जगत की एक महान हस्ती गुलशन कुमार की भी आज जयंती है। आपने अपने जीवन काल में एक तरह से देखा जाए तो हिंदी सिनेमा के म्यूजिक में क्रांति ला दी थी। एक म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर की हैसियत से शुरुआत की और फिल्म प्रोडक्शन का सफर तय किया। 90 के दौर में करीब करीब हर फिल्म म्यूजिक लेबल आपकी कंपनी के नाम रहा। कई नई संगीत प्रतिभाओं को आपने प्रमोट किया, मासेस की पल्स को समझ कर अपने म्यूजिक ब्रांड को कस्टमाइज किया और आपकी वह धरोहर अब आपके बेटे भूषण कुमार के सुरक्षित हाथों में है, जिन्होंने आपके वेंचर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुलशन कुमार को हम जाने कितनी ही खूबसूरत म्यूजिकल्स के लिए याद करते हैं, और ऐसा ही एक गाना मुझे लगा कि आज के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए। जन्म जयंती के मौके पर गुलशन कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि, और चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत फिल्म आशिकी से।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चैनिका के साथ जुड़े हैं आप FM गोल्ड कोलकाता पर। फिलहाल घड़ी में समय 5:52 और 45 सेकेंड्स और देखते देखते हम चले जाएंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक के लिए शाम 6 बजे और 6:10 पर मैं दोबारा आप सबके पास लौटूंगी लेकर ये खूबसूरत गाने, खूबसूरत क्लासिक्स। और आपकी चाय बन चुकी है, आपने पी ली है या फिर आप दूसरे भाग में मेरा साथ देंगे चाय पीते हुए, ये आप पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अभी घर की तरफ आपने बस जर्नी जो है आपकी वो शुरू की है ऑफिस से, या फिर ये भी हो सकता है कि घर पहुंच चुके हैं। जैसा भी है, जो भी है आपके आसपास का माहौल, हम हैं आपके लिए केवल और केवल आपके कानों में शहद घोलने के लिए। यही है मैजिक क्लासिक्स का, जो रोजाना आप तक हम पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अच्छा, आप जानते हैं कि आज की जो तारीख है, जैसे हमने हिस्ट्री की तरफ मुड़कर देखा, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा, तो पता चला कि कौन कौन से खास ऐसे लोग हैं जिनका आज जन्म हुआ था, और ये भी जाना कि कौन सी खास घटनाएं आज के दिन घटी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इस दिन को और ख़ास बनाती हैं। आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिन? ताकि बेटर हैंड हाइजीन को प्रमोट किया जा सके, जो हमें इन्फेक्शंस को दूर रखने में मदद करता है। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य की सबसे

आपका जो हेल्थ है वो एकदम से, मतलब जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाली जो एक जो टेंडेंसी होती है, ये समस्याएं नहीं होती हैं। तो सबसे पहली डिफेंस लाइन हेल्थी रहने की वो है क्लेनलीनेस, और क्लेनलीनेस का सबसे आसान तरीका हाथों को धोना। लेकिन क्या हम जानते हैं कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हाथ धोए जाने चाहिए? नहीं। यहाँ जो भी आपका जवाब हो, मैं आपके साथ चंद बातें जरूर साझा करूंगी, लेकिन कार्यक्रम के उस भाग में। जी हाँ, एक प्रॉपर तरीका होता है हाथ धोने का, बस यूं ही नल खोला हाथ धो लिए ऐसे नहीं होता। तो क्या है वो प्रॉपर तरीका हाथों को साफ करने का, जानेंगे हम लोग कार्यक्रम के दूसरे भाग में। फिलहाल चलिए इस पहले भाग को हम विदा कह दें, और आज के चाय और क्लासिक्स के पहले भाग का ये अंतिम गाना आप सबकी तरफ मैं यूं बस भेज रही हूँ, लता मंगेशकर की आवाज में, घर फिल्म से। खबरें सुनकर वापस जरूर आइएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडव्य बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPN के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

संभलना तो पड़ेगा ही अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए संभाल कर हर एक कदम रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए तो जो मैं आपसे कह रही थी उस पर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो अब जो मैं कहने वाली हूँ वो बातें आप मन लगा कर सुनेंगे। आज है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और जैसे कि मैंने पहले भाग में हमारे कार्यक्रम के मैंने कहा कि हमारे हेल्थ की सबसे पहली और बेहद ज़रूरी डिफेंस लाइन जो है वो है क्लिनलीनेस यानी स्वच्छता। तो ये बहुत इजी एक वे आउट है, अगर हम क्लिनलीनेस बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे इजीएस्ट तरीका है हाथों की सफाई। तो हाथ धोने का सही तरीका होता है और हम सबको पता होना चाहिए। तो चलिए वर्ल्ड हाइजीन डे के मौके पर जान लें कि किस तरह से सही तरीके से हाथ धोया जा सकता है। सही तरीके से हाथ धोने से क्या होता है, न केवल जो जर्म्स हैं कीटाणु हैं वो खत्म होते हैं बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचने में मदद भी होती है। तो बहुत इजी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो बस जो पानी है वो साफ होना चाहिए, हाथों को आप भिगो लें साफ पानी से, फिर उस पर आप हैंड वॉश या साबुन जो भी है उसे लगाकर कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह रगड़ें। जी हाँ, यही पर हम चूक जाते हैं। 20 सेकंड्स तक आपको हाथों को रगड़ना है अच्छी तरह से, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के नीचे और कलाई तक अच्छे से सफाई करनी ज़रूरी है। तो 20 सेकंड्स तक अच्छी तरह से आपका जो हैंड वॉश है उसको आपने हाथ में लगाया, इस तरह से आपने बस रगड़ा हाथों को अच्छे से, उसके बाद साफ पानी से धो लें हाथ और सुखा लें। इजी है ना। यहाँ पर जो पंच है वो पंच है टाइम का, जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। 20 सेकंड्स तक साफ पानी और साथ में साबुन।

ये हैंड वॉश का इस्तेमाल, यानी सही तरीके से हम हाथ धो रहे हैं। और यहाँ इतने खूबसूरत गीत जो हम सुन रहे हैं उनसे हमारा जो दिल है ना वो भी बस ऐसे ही चमकदार शीशे जैसा चमचमाता क्लीन हो जा रहा है। जितना भी दर्द है, जितनी भी धुंध है दिल में, वो सारी की सारी छट रही है, साफ हो रही है। तो ये जो संगीत है ये भी तो कह ही सकते हैं कि ये भी हमारी एक डिफेंस लाइन ही है जहाँ तक हमारी वेलबींग का सवाल है। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुना जाए, इस दफा एक और ड्यूएट गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनते रहें चाय और क्लासिक्स चैनिका के साथ।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

राहुल देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। अब्दुल्ला फिल्म से आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज। चाय और क्लासिक्स जारी है और क्या आप जानते हैं कि आज यानी 5 मई को एक और बड़ा ही खास दिन मनाया जाता है। आज है वर्ल्ड एस्मा डे। मई के महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। एस्मा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और जो रोगी हैं, जो लोग हैं, जो इस परेशानी से अफेक्टेड हैं, इसकी देखभाल कैसे करें और किस तरह से इसका मैनेजमेंट हो, इसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी इस खास दिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि एस्मा अटैक केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि शरीर के अंदर होने वाले बदलावों से भी जुड़ा होता है। जैसे गर्मी में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का अगर इम्बैलेंस हो जाए, थकान हो जाए, उससे भी सांस की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। तो गर्मियों में समस्या से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट्स इस विषय पर क्या कहते हैं, बताती हूँ आपको बस थोड़ी देर में।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: सुन रहे हैं आप चैनिका को एफएम गोल्ड कोलकाता पर। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि आज है वर्ल्ड एस्मा डे। मई के महीने के पहले मंगलवार को ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसी विषय पर आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा अखबार में, जहां पल्मोनोलॉजिस्ट्स बता रहे हैं कि ठंडा और गर्म दोनों तरह का जो वेदर है, दोनों तरह के जो मौसम होते हैं, वो एस्मा रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण और बढ़ते तापमान का जो सीधा असर है वो श्वसन स्थितियों पर पड़ता है, और गर्म मौसम प्रदूषण और एलर्जी के स्तर में वृद्धि होती है सीधे तौर पर, जिससे कि एस्मा अटैक का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। और भी मैंने ये पढ़ा जो उन्होंने कहा है कि गर्म मौसम में हमारा जो एयरवे होता है वो भी संकुचित होने लगता है, उसका खतरा रहता है, और प्रदूषक जो हैं पर्यावरण में उनका स्तर जो बढ़ता है, और ह्यूमिडिटी बिगड़ने के वजह से भी एस्मा के जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं जिनको ये परेशानी है। और डिहाइड्रेशन की समस्या तो हम सभी को होती है, तो जिनको एस्मा की परेशानी समस्या है वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत सारा फ्लूइड लें, खूब सारा पानी पिएं। और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या आप जानते हैं कि हमारी फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एस्मा की समस्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी इस कंडीशन को ट्रिगर करती हैं, तो उन चीज़ों से तो सबसे पहले आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए जिससे आपकी ये समस्या बढ़ती है, ट्रिगर होती है। घर के अंदर क्लिनलीनेस का होना बहुत ज़रूरी।

यह साफ सफाई बनाए रखना जरूरी है। एयर कंडीशनर और कूलर के फिल्टर को नियमित साफ करना जरूरी है और जैसे कि मैंने कहा पर्याप्त पानी पीने की भी आवश्यकता है और अपने डॉक्टर की सलाह पर जो भी दवाएं या इन्हेलर वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको नियमित रूप से अगर आप लेते हैं तो आपकी एस्मा की जो परेशानी है वो इस गर्मियों के सीजन में कंट्रोल में रहेगी। और अगर बाहर जाना ज़रूरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य कीजिए क्योंकि ये धूल और एलर्जन से आपको बचाएगा। और इस साल का जो थीम है वो भी मैं बताना चाहूँगी, इस साल वर्ल्ड एस्मा डे का थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विथ एस्मा स्टिल एन अर्जेंट नीड। जी हाँ, ये एक अर्जेंट नीड है जिसके बारे में शायद लोगों को अभी भी उतनी जानकारी नहीं है। तो हमने जाना जितना कुछ संभव हो सकता है हम जैसे आम आदमियों के लिए जानना और इसको अवश्य ही हम प्रसारित भी करेंगे और अभी फिलहाल गाना सुनेंगे। बातें होती रहें लेकिन साथ साथ म्यूजिक भी चलता रहे, यही तो ज़रूरी है ना। एक लवली ट्रैक आपके लिए हरजाई फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुनते रहें साथ रहें चाय और क्लासिक्स।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

चाय और क्लासिक्स जारी है और अब आपको बताऊं कि कौन से ऐसे लोकल इवेंट्स हैं जो इन कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आप जिनका हिस्सा बन सकते हैं। तो विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में कोलकाता मशीन टूल्स शो के 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा 8 से 11 मई और होची मिन सरणी स्थित एक कैफे में ग्लास पेंटिंग आर्ट डेट यानी एक वर्कशॉप समझ लीजिए उसका आयोजन किया जाएगा। आज से लेकर 9 तारीख तक और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है ये वर्कशॉप, तो आप बन सकते हैं इन इवेंट्स का हिस्सा। और फिलहाल एक सुंदर सा खूबसूरत सा गीत एक और आपके लिए, फिल्म का नाम मशाल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़।

बस यही कहना चाहती हूँ मैं, यादों में मुझे आपकी जगह दीजिएगा। और जेनिका कहती है फिलहाल एफएम गोल्ड से टाटा बाय बाय, आप सुन रहे थे चाय और क्लासिक्स मेरे साथ। और ये गीत हमने सुना जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया, हृदयनाथ मंगेशकर की कॉम्पोजिशन, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और कार्यक्रम का आज का अंतिम गीत आशा भोसले की आवाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, ये वादा रहा फिल्म से। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा था और संगीतकार थे आर डी बर्मन। सुनते रहें, साथ रहें एफएम गोल्ड खरा सोना पर। मैं आज के लिए आपसे लेती हूँ विदा, किसी और दिन जरूर होगी आपसे मुलाकात।

बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को

0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं घटती वृद्धि

0: वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
6: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry.

0: তারা কিন্তু বারংবার এই দিনটা তো একটা দিনের পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছেন না, আগামী এক বছর ধরে এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে বহু জায়গায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবার কাজ চলবে। কী কাজ, সচেতনতা কাজ হবে, এক নম্বর হচ্ছে অ্যাজমা যে কোনো মানুষের জেনে নিতে হবে এবং ইনহেলারের সঠিক ব্যবহার বৈজ্ঞানিকসম্মতভাবে করতে হবে যেভাবে আমরা আলোচনা করেছি। এবং সবশেষে যেটা বলার যে অ্যাজমা যেহেতু একটা পরিবেশজনিত অসুখের বহিঃপ্রকাশ, আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দূষণমুক্ত রাখার দায়িত্ব আমাদের যেমন আছে, আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যেমন আছে, আমাদের কমিউনিটি এবং কমিউনিটি লিডার্স যারা পলিসি মেকার তাদের সকলের আছে। এবং এই যে ওষুধের কথা, ইনহেলারের কথা, মিটার ডোজ ইনহেলারের কথা বারংবার আলোচনায় আসছে, এইটা উৎপাদন সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্যে যে সমস্ত কোম্পানি ওই ওষুধগুলো তৈরি করেন তাদেরও দায় দায়িত্ব আছে নির্দিষ্ট পরিমাণে তৈরি করার, আর প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে সহজলভ্য করে দুয়ারে সরকার শুধু করলে হবে না, দুয়ারে যাতে ইনহেলার হাতের কাছে প্রয়োজন মতন যখন দরকার তখন পাই তার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করতে হবে।
1: মানে
0: সকলে মিলে করলে নিশ্চিতভাবে অ্যাজমাজনিত সমস্যা, হাঁপানিজনিত সমস্যাও কমবে, তাতে মৃত্যুর হাত থেকে আমরা অনেককেই বাঁচাতে পারবো।
2: অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আপনাকে আজকে এতটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য এবং আমাদেরকে সুপরামর্শ দিয়ে অন্তত এই রোগটা সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য।
1: মানে আমাদের সচেতনতায় প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা মানে প্রত্যেকটা মানুষকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দিতে পারে, তাই তো?
0: আমরা তো কাজই হচ্ছে বা আকাশবাণী বা গণমাধ্যম তাদের সকলেরই দায় দায়িত্ব সমাজের সর্বস্তরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।
2: আজকের মতো আমরা এখানেই অনুষ্ঠান শেষ করছি, আপনারা সঙ্গে থাকুন, আমাদের আজকের মতো শুভরাত্রি।
0: শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
4: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
3: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता

0: में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगून बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपए मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupee ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
2: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
1: The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल।
1: मोहम्मद रफिर कंठे आधुनिक गान सुनछेन।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो